सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकर्क

काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै।

संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दया है। सलोक महला पांजवा।

0: सत्संग जी
1: बोलो जी।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आशीर्वाद पाचे दसवीं प्रेत चमर कहे गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित पुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हरगोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कान उन आए सब साई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय। दसा पातशाह के पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दत्ते अंतर के खाल सत्या। बोलो जी वाहे गरीब नवाज। आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपया वन छकया दे चलाई ते वाहे देख रेड की दादना प्यारे सत्यारे की कमाई दत्ते अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंगड़िया धर्म हे सी दिते बांध बांध कटवाए कोपरिया लवाइया चरखड़िया के जड़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सिखी से कैसा सत्संग दबाया ते नानी कमाई दत्ते अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां गुरुद्वारे का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेता है चित आवन का सर का सर्व सुख हो गया जहां जहां गुरु खालसा साहब का चरिया देव देव की फतेह बिंद की पैस पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखान सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की विवाह पंजे सरदार साहब दता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ को छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दान सेवा संभाल का दान अपने खालसा जी ने बख्शो। ये नोटियां की ओर गुरु न्यासियां आसरे गुरु तान तान गुरु दार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास बख्शिश की है आपके चरण बाद पैद की बारिश जी हैं आज वे संध्या समा जान के आदि चरण शोध और रेरा साहब के पाठ की कृपा करो भूया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सच कर प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे सारी कृपालता करो जी अगो तो शोध के पितृ बाणी का आदिमान बुद्धि बख्शिश करो। फिर आज इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता पितृ कलाप चाहते देख तैयार कर हददार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद शाह संगत की रचना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप जतार बख्शिश करो दुखां कलेशां रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। की विवाद आपके बख्शिया दाता जी लंगर छुट सवारियां प्रवान करनी जतार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैली संघा संघड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकल बख्शो तो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना से बालता करो। गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेले तो लैके दर से आई साफ संगत दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार जी आपके दर कर सेवादार काका हर सुखमीत सिंह दे अंजीर के पातशाह डिग्री संपूर्ण करने की खुशी में परिवार वालों बेहद माया पेटा प्रवान दतार बख्शिश करते हुए हर सुखमीत सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो अपने सेहत में सोहनिया जाबा की दाद निकालता करो जी। गरीब नवाज कमाइया संभल करो दाते दतार जी गरीब नवाज बीबी जसबीर कौर अपने सारे परिवार की तंदुरुस्ती सुख शांति चाहती करा वास्ते बेनती करते हैं बेहद माया लैके आपके चरण हाजिर दतार प्रवान करो बहिष्कार गरीब नवाज बीबी जसबीर कौर ने सारे परिवार को तंदुरुस्ती बख्शो चाहती करा बख्शो तो सदा अपने चरण बेची बख्शी संभालता करो चरण रोगबान का प्यार बख्शी संभालता करो जी। गरीब नवाज काका गुरबीर सिंह के जन्मदिन की खुशी परिवार दतार जी बेहद माया भेटा जी चरण प्रवान दतार बख्शिश कर दें काका गुरबीर सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौम का आग्याकार बख्श कर दता बच्चे गुरसिखी की दाज बख्शिश करके उची विद्या की दाज संभालता करो जी उची विद्या दाज बख्शिश करो गरीब नवाज मेहर करो सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुख शांति चाटी खड़ा करनी दातियां की लाजपात को कमाइया सफल करो जी। गुरु गरीब नवाज मेहर करो दता दूत राजकरण बैठिया राजकर्ता के शर्म करिए सारी संगत घड़िया लेके लाओ राम ने भक्ति संगत बख्शे संगत आदि चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेहद मैं ऑनलाइन गुरु कर ਗੁਰਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇ ਪੇਟਾ ਕਰ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵਾਧ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿਤਰੋ ਗੁਣਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਬਰੰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਥਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਮਤਾ ਵਾਸ ਜੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗਿਰਿਰਾਜ ਆਪ ਅਕਸ਼ਾ ਸਾਦਾ ਬਖਸ਼ੋਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਚਰਨਾ ਜੀ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਵਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। रहाओ साकत हर रस साधना जाने, अंतने अंतर हों मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जमकाल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पवखंडा है। अविनाशी पुरुष पा

सो धन गुरु सा वास है हर दे स्नेहा हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिध जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या से सहा बड़ दाने हों सतगुरु।

किन को मिलियो प्रभु नाश, कहीं कोट मांगे सत्संग, भार भ्रम तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कहीं कोट खानी अर खंड, कहीं कोट कास।

कंकार कई कोट की ने बो पहात प्रवती हुई ब्रह्माय समात ताका अंत न जाने कोई आप ही आप नानक प्रसोई कई कोट पार ब्रह्म के दास किन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे ये कोने त्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पै सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज सुमाव है अपने जन कौ सास सास सुमारे नानक हुए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रवीक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहारण है जल थल महियल सोए अष्टपति करण क्राण करने जो जो तिस पावे सोई हो किन में थाप थाप नुहारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे तार दल रहा वे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रिया समाई प्रभावे मानु कत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे प्रभावे विश्वास ते राखे प्रभावे ता हर गुण पाखे प्रभावे ता पति तुधार है आप करे अपन विचार है दुहा श्रिया का आप स्वामी खिले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि और ना आवे कौ मानते क्या हुए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किचले ज्योतिष पावे सोई करे अनजान।

चार कुंट फिर आवे कर कृपा। जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, किन मैं नीच गीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। जा का दृष्ट कछु नावे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जा कहो अपने करै बख्शीस ताका लेखा ना गने जगदीश। जियो पण सब तिसकी रास काट काट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाही इस हाथ कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई फुनतियो। कहूँ ऊंच नीच में बसे कहूँ सोग हर खड़ंग हसे, कहूँ निंद चिन्ह व्यवहार कहूँ ओ बकास पयाल, कहूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला उनहार। कहूँ नृत्य करे भोपात कहूँ सोए रह दिन रात, कहूँ महाक्रोध विकराल कहूँ सर्व की होत रवाल। कहूँ होए बह बड़ राजा कहूँ पेखारी नीच का साजा, कहूँ अब कीर्त में आवे कहूँ पला पला कहावे। ज्यो प्रभु राखे ही रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कहूँ होए पंडित करे वख्यान कहूँ मोन तारी लावे ध्यान, कहूँ तट तीर्थ स्नान कहूँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कहूँ कीट हस्त तंग हुए जिया अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे तिवन चावे, जो तिस पावे सोई होए नानक दूजावर ना कोए। कहूँ साथ संगति उपावे उस स्थान ते बोर ना गावे, अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रतेक रंग सदा वसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राजमान सो नरपाती होत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत सो होत विष्टा का जंत। आप उसका कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजन परमा।

जिस सास बिना मृतक की लोथा, संत के दोखी की जड़ किच ना है, आपन बीजा पे ही खा है। संत के दोखी का और ना रखन हार, नानक संत पायता लय उबार। संत का दोखी यूं बिललाए, ज्यों जल भी हूं मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक इंद्र नित्रा पे। संत का दोखी छुटे, संत का दोखी छुटे इकेला, जो बुआर तिल खेत मा दुहेला। संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत। कृत निंदक का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावे सोए थेया। संत का दोखी बिगड़ रूप हुए जाए, संत के दोखी को उधर गए मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी नाम रह ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजे ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना तिष्ठे कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। भया कृतना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की स्तुत करो दिन रात, तिसे तिहाओ सास ग्रास। सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक। तजो सियान सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जायपदी। मन की टेक वृत्ति सब जान, देवन खोए कह भगवान। जिसके दिया रह गाये, पूर्ण तृष्णा लागे आए। मारे राखे एक आप, मानुक किसना ही हाथ। तिसका हुकुम बू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर पर सोए, नानक विघ्न ना लागे कोए। उस तत् मन में कर निरंकार, कर्मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दर गए नानक पूजल मथा। बड़ भागी ते जान जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत कनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, हित की ओ सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक पिने निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद आपन आप सुझ है, इसकी जानो तृष्णा बुझ है। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते हो हर जन रहत। अनदिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोए निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फांसा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे ना लागे दुख। जिसका हर ब्रह्म मन चितावे, सो संत सहला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीझेया, गुर प्रसाद तत् सब बुझेया। जब देखो तो सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल। नह किस जन्मे नह किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आप ही आप सगल में आप, अनेक जुगत रचता बुथाप। अविनाशी नाही किच खंड, तारण तार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपैता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो स्वभावंत।

प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है। जो अंधकार दी भुख वरगास गुर दर्शन देख मन होए विकास, जो माव ध्यान में मार पावे ते साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बात हो तूर नान खेल लो चापूर, मन मूर काय बिल्लाइए प्रभु लिखे का लिखिया पाइये, दुख सो प्रभ देवलहार और त्याग तू तिसे चितार, जो कच करे सोई सुकमान मुला कहे फिरे जान, कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रसलो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे, इस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया, तजब माल्यो मन मोल राम नाम हृदय में तोल, लाद के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोय मुख उजल हर दरगे सोए, यो वापार बिरला वापार है नानक ताक है सद बलहार है, चरण साध के तुय तुय पियो अब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये, अनेक विगंते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है, ओट गई संते दरगाया सर सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवन हार पुके को देवत आधार, सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पुरु लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका ओ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी सबते।

गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरुप्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आदि सच जुगादि सच है पे सच, नानक कोसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सतप्रसनहार, पूजा सत सतसेवदार, दर्शन सत सतविखनहार, नाम सत सत्यावनहार। आप सत सतसतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ बक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, पूजनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछानिया, जा कह हृदय विश्वास प्रभु आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निर्भउ होए बसाना, जिसते उपजै तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गढ़ाई, ताको भिन्न ना कह ना जाई, बुझै बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जानने संग, प्रभु का

अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर राख है, अपने दास का उदय बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आफत राख है ताकि गतवित को ना लाख है, प्रभु के सेवक कौ को न पहुंचे, प्रभु के सेवक पहुंचते ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक है जिस प्रगटाया, निकी कीरी महकल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है, इसका सास ना काटत आप, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन कर वो पहात, इसके कर्तव्य थे जात, मारे ना राख है वरना कोई, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सो

पुरंग, नाम सुखन नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्तानी, मन तन नामे नाम समानी, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कह सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभु अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाये, प्रभु अपने सिउ रह समाये, जो हुआ होत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण कह एक न जानो। आठ पहर प्रभु से हजूरे, कहो नानक सी जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावे, इसके दर सब पाप मिटावे, और श्यान सगली छाट, इस जन की तू सेवाला, आवन जान ना कोई तेरा, नानक इस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की कृपा पाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर्मत मल हिराए, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख कौ नाम तन दे, गुर का सिख उठ पागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमारे, गुर कै गृह से उकजुर है, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कचना जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचै सतगुर के पास, सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नेकामी, किसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म है जन जन्म है पार ब्रह्म, एक कहे आपने कुछ परम, सहस्यांत ले आना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये, सफल दर्शन पेकत पुनीत, परसत चलगत निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दृघ गवे, सुनकर बचन करन आघाने, मन संतो का तुम पतिया ने, पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देख है हुए संत, कुण बेअंत कीमत नहीं पाए, अमृत दृष्ट देख है हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिसलय मिलाए, जेवाए कुछ तत्नेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, कहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर परम निर्वाणी, मेरा हार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनिक भगत मंदन नित करहे, चरण कमल हृदय स्मरहे, सदबल हारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने, एहो रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया तै संग ना लेप, मन मेरा खे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तह तेना से, तब तुम्हारे ठाण वर्ताई, अंध पया दुख ना ठीक पाई, जन्म मरण के मिति अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पहुंचूका निरपोह हुए बसे, पहुंचूका निरपोह हुए बसे, सगल व्याध मन तेख है नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साथ संग जपना मुरारी, तित पाई चूके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जसरवन, निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभु आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा ना ही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, पोत पोत रविया रूप रंग, पय प्रकाश साध के संग, रच रचना अपनी कलकारी, अनक बार नानक बलहारी, स्लोक साथ ना चाले बिन भजन,
ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ

आधार अवर उपाव सबमीत विसार हो, चरण कमल रिद में उड़ता हो, कर्ण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, इहो तन संचो हो भो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार फुट उठता आवे सो तन हर सेवा ती पावे, जिस सुख को नितमा छह मीत सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को कह पली करनी सा शोभा पजर की सलनी, अनुकुपावी रोग न जाए रोग मिटाया रोग कदलाए, सर्व निधान में है हर नाम निधान, जप नानक दरगह प्रमाण, मन प्रबोध हर कहनाए, दह दिस ताव तो आवैठाए, ताको विघ्न न लागे कोए, जाके हृदय से हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाम, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौविन से पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कौ नानक काटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यूं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनिक पावना छुटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत कर हो मन लाए, मन बंचत नानक पल पाए, संगना चारस्ते रहता ना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना, सुत मीत कुटमर बनता, इनते कहो तुम कौन सनाता, राज रंग माया विस्तार, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कौन छुटकार, असस्ती रत सवारी, झूठा डंप छूट पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पुछताना, गुर की मत तू ले ही आने, भगत बिना बॉडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राख हो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाहो, सुनत कहत रहत गत पाहो, सार पूत सत हर को नाओ, सह सुभाय नानक गुनगाओ, गुनगावत तेरी उतर समैल, विंस जाय हो मैं विकफैल, ओहे अचिंत बसे सुखनाल, सास गिरा सर नाम समाल, चार श्याम सगली मना, सात संग पावे सच धना, हर पुंजी संत करो व्यवहार, यहाँ सुदर गह जयकार, सर्व निरंतर एक को देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख, एक को जप एक को साला है, एक सिमर एक को मन वाहे, एक अस के गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत, एक को एक ही कर आप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रभु आप।

पूरन पुरख नहीं डोला ने सुपर परे प्रेम रसरंग उपजय चाव साध के संग परे सन्मान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभु होए दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दू भ्रम गया इस पुनी श्रद्धा सब पूरी दब रहा सत्संग अजूरी इसका साथी लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरा जे काल ना पाने सो क्यों

राखे, गुरु प्रसाद को फिर ला लाख है। सो क्यों मिश्रा जी व्यक्ति काड है, जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुर पूरे तथे बुझाया, प्रभु अपना नानक जंती आया। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुपाव, आप जपो हरे नाम जपाव। भगत पाए तरिये संसार, इन भक्ति तन हो सी छार। भगत पाए तरिये संसार, बिन भगति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निदनाम, मुड़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रचाओ, मन तन अंतर ही सुहाओ। नेत्रो पेक दर सुख होए, मन विकसे साचरण तोये। भगत जना के मन तन रंग, मिला को पावे संग। एक वर्ष दीजे करमया, गुरु प्रसाद नाम जप लिया। ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहा सब समाए। प्रभु बख्शंद दीन दयाल, भगत पिछल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटाकर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सोए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत। हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी सन पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक निमुख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का प्रसंगीत, रसना जगती हर हर नीत। पली सो करनी सो बातन वंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभु देहो निवास, सर्व सुख नान प्रगास। लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका, आपे ही फिर जा। अष्टपदी जब कार्य कछना दृष्टिता, पापुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद, तब वैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चैन न जापत, तब हर सोग कहो किसे व्याप्त। जब आपन वाप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किसो उत्परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब मन मुक्त कहो किस कहो गनी। जब जब ये कह हर गम पार, तब नरक स्वरूप कहो कौन अवतार। जब निर्गुण पुरुष से सुभाए, तब शीर्षकत कहो कित छाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तरह, तब कौन निडर कौन कत डर है। आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन वासन, तय जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता पुरुष होए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रवे का, तब चेत्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन वाप आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पोरख पुरख पत होता, तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय चल चित्र लगत कहो कीस। क्या ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, त्यह किसे पू कौन तृप्तावे। कर्ण करावन करने हार, नानक करते का ना सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पै प्रवीण, वेद कते तह वेद कते कहा कूचीन। जब अपन आप आप उतार है, तो सगन अपसगन कहाँ विचार है। जय अपन ऊंचा अपन आप नेरा, तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्मात, नानक अपनी गत जन हुआ। जय छल छेद भेद समाया, वहाँ किसे व्याप्त माया। आपस को आप है आदेश, ते गुण का ना ही प्रवेश। जय एक कहे एक एक भगवंता, तह कौन चिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप आप तियारा, तय कौन कत कौन सुनने हारा। भो बे तू ते ऊंचा, नानक आपस को आप है पहुँचा। जय आप पंचकार, ते गुण में किनो विस्तार। पापुन तह पे कहावत, को नर्क को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल, ओम मैं मोह परम पै पहार। परम पै पहार, दुख सुख मान अपमान। अनेक प्रकार की वख्यान, आपन खेल आप कर देखे। खेल संकोच चेतो नानक एक है। जय अवगत भगत तहया, जय पसरे पासार संत प्रताप। दूहू पाख का आप है तनी, उनकी शोभा उन्हूं बनी। आप है को तक करे नंद चोज, आप है रस भोग निर्जोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे।
ਬੇਸਮਰ ਥਾਗਨਤ ਤੋਲੇ ਜੋ ਬੁਲਾਓ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਉਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਦੀ ਆਪ ਕਥਿਆ ਸੁਣੇ ਹਾਰ ਆਪ ਹੈ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪ ਨੇ ਭਾਣੇ ਲੈ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਤਤਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭਤਾ ਕੇ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਤਿਸ ਤਾ ਜਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਏਕ ਨਿੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਿਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੇ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੇ ਵਿਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਜੀਅਨ ਬੋਪਾਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਤ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰਿਆਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰੇ ਕਹਿਣਾਏ ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਵਾਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅਨਦਿਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾ ਪਹਿ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ।

सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बिसरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविए गुण निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख कर लह जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह समाए गुर ए सर गुरु गोरख बर्मा

तिसर न जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाय करी। जेते सिरट पाए वेखा, विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवार माणक, जे गुर के सिख सुनी। गुरा एक देव जाए, सब नाचियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुगचारे आर जा, होर दसुणी होए, नवा खंडा भी जानिए। नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए कै। जस की रत जग ले, जे तिस नदर न आवे, ता वाद ना पूछे के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई नस जई, जे तिस गुण कोए करे। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै तरत वल आकाश।

ईश्वर वर्मा इंद सुनया मुखसला अणमंद सुनया जुग जुगतन भेद सुनया साध सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत्संतो ज्ञान सुनै अठसठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पावे मान सुनै लगै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरागुणा के गहा सुनै सिख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राहो सुनै हाथ वैसगाओ नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पीछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बहकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन के सुध मन्ने मोहे चोटा न खाए मन ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन ने मार्ग ठाक न पाए मन ने पद सी प्रगट जाए मन ने मगना चले पंथ मन ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन ने पावे मोख द्वार मन ने परवार ऐसा तार मन ने तरे तारे गुर सिख मन ने नानक वे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान।

नहीं सुमार, तोल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखे आजिन सूत, जे को बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर के तापार, तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया उड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए, केता तान साले रूप, केती दात जाने कोण कूत, किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुपक सार, असंख मौन लेव लाए तार, कुदरत

तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाहे कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्त आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कौन सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कौन से रुति महो कवण जित हो आकार विल न पाया पंडती ये होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत महो ना कोई जा करता सिर टेकव साजे आपे जाने सोए क्यों कर आखा क्यों सलाही क्यों वर

सो है पाता लापाता लख आगास आगास उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात सैस अठारह कहन कतेवा असलो एक तात लेखा होए ता लिखिया लेख।

नदिया अतैवहा पवह समुदना जान यह समुद सहा सुलतान गिरहा से ते माल तन कीड़े तुलना होनी जे तिस मनोना विसरह

साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरे करमी दात, बहुता करम लिखिया ना जाए।

ते सब जाके रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्वेकार चलावे है लेखे आवे भाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत

अनाद अनिल अनाद अनाहत जग जग एको वेस एक दो जीबो लख हो हे लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिय है एक नाम जगदीस एत रहे पद पौड़िया चढ़िय होए अकेस सुन गल्ला आकाश की केटा आई रेस नानक नदरी पाई है।

अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी नाते नृसिंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चांद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नामे समस्ते सर्वे प्रपंगी परमाते, समस्ती विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राजराज विसृंग परम रूपे, नमो जोग जोग विसृंग परम सिद्धे, नमो राजराज विसृंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेक्षिया परमिया भोगी अभुगते, नमो जोग जोग विसृंग परम जुगते, नमो नित नारायण करूर कर्मे, नमो प्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोगहर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाहंग, नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं सनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्टिष्टे, नमो तंत्र तंत्र, सदा सदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा विदकर्ता, अधोर दर्दंग अगंग ओघर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अचेदी अपेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त ताम, तेरा जो चाचरी छंद, जले हैं तले हैं, पीते हैं पे हैं, प्रभु हैं जू हैं, देश हैं पीस हैं, पूजन प्रयात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने, नमस्तं नृणाते, नमस्तं परमाते, नमस्तं गंजे, नमस्तं पंजे, नमस्तं काले, नमस्तं पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराज, नमो साज साजे, नमो शाह शाह, नमो माह माह, नमो प्रीत प्रीते, नमो नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परम तानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृष्ण, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे कीजे पीजे समस्त प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा ऋतसिंह निवासी चरपट छंद तो प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्म अलख कर्म, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देव सर्वंग पेहुंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंद तो प्रसाद, आद रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव पेहो आदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल जात्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख, आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग, जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता ही एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक, खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक देव पे होना जान ही जय भेद और कतेव, रूप रंगना जात पात सो जान ही के जय तात्मात्मा जात जाकर जन्म मन विहीन चक्र वक्र फिर चात्र चक मान ही प्रतीन, लोक चौदह के विखय जग जाप ही जय जाप हुआ देवनार्द मूर्त था प्यो सदै जे थाप था प्यो सदै जे थाप, परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो संभव गुणन पंजनहार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अधीश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपीस, अंगराग ना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन वाद रूप सूत, अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पीख सर्व

प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन पंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निष्दिन अनास राजान बाहो सहन साहु राजन राजपान पहान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन पूत अंगापा पंगत मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम मत दुत प्रचंड मित गत आखंड आलिश्य कर्म आदिश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडड बाढ़ चाचरी छल तो प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे पारे हरियं करियं निर्नामे कामे प्रियं प्रयात छंद चातर चक्र करता चातर चक्र हरता चातर चक्र दाने चातर चक्र जाने चातर चक्र वर्ती चातर चक्र परती चातर चक्र पाले चातर चक्र काले चातर चक्र वासे चातर चक्र वासे चातर चक्र माने चातर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्मंग न काय जन्म जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र है प्रतिशय दिशह दृश्य कृषय भगवती छंद तो प्रसाद कथ ते क्या चि देश क्या पिज बेसह क्या गंज कर्म क्या पंच परम क्या पिज लोक क्या आदित्य सुख है के उतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजम प्रभा के त्रमुख तुझा है के अशोक वर्ण के सर्वा पर्ण के जगतन कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद देव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कैधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के फुल गुना है के साहन साह है के कारण पुनिंद है के रोजी देहिंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के प्रमुख फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्नल वजू है तमाम लुजू है मैं सुरसलाम है सलीकत मुदाम है गनीमत सिकस्त है गरीब परस्त है।

स्वरूप हैं, त्रिमुक्त भूत हैं, परपुक्त प्रभा हैं, सुजुप सदा हैं, सदैव स्वरूप हैं, भेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव काम है, निर्वास रूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाध रूपी, अनाद स्वरूपी, अनंगी, अनामे, त्रिपंगी, त्रिकाले, त्रिपंगी, त्रिकामे, त्रिवर्गुण, त्रिबाधे, अगंजे, अगाधे, सुभंग सुरभागे, सुसर्वा अनुरागे, त्रिपुक्त स्वरूप है, अचिज है, छूत है, केंद्र प्रनाश है, पृथ्वी उल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, परयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुप स्वरूप है, परयुक्त अनूप है, चाचरी छंद।

है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, नित्यंत है, सुनिंत है, लिख है, दिख है, लेख है, पीख है, अडा है, गा है, संभ है, गम है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, जात है, जाद है, चटपट छंद तो प्रसाद, सर्वघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वज्ञाता सर्वंगर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग सर्वं कर्मंग सर्वं धर्मंग सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता और सावल छंद तो प्रसाद। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म।

है के चलन प्रकाश है के अमित सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमित विभूत है के अमित भसा है के आत्म प्रभा है के चलंग अनंग है के अमित अपंग है मधुपार छंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम वरवर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव नाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनुभव नाश तीर्थ तार तुराश आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कतमीय नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कारे कारे प्रणाम चित्रन नाम अंचज गात आज जिना बात अंचज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अनटट अपार आठ तरु अत ठीठ करम अन वरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तो प्रसाद करणालय है हर काले है कल कंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभूवारण है तृत के तरण है जग के करण है मन माने है जग जाने है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा करे विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलकंडस है प्रत्ये पर है करुणा कर है आ जपा जपै तपा तपै कृता कृत्य अमृता अमृता अमृता अमृत करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी तीर्थ है हम तीसर है परमेश्वर है कृता कृत्य अमृता अमृत है जबा कृत्य अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पोपंजन है हरगंजन है रितापन है जपजापन है कलंकृत है सर्वाकृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद

अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगहा डहा नाते प्रमाते अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकरमंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगुंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकाम विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते अजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र भुगते सुंभो सुभंग सर्वदा।

कालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपुते ओंकार। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवे तव प्रसाद सवैये ओंकार। सतगुर प्रसाद श्रावक सुध समूह सिद्धांत के देख रियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मात को उना देखे प्राणपति के। श्री पद को उना देखे प्राणपति के। श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति विनय कृति के। माते मतंग चरे जर संग अनु पुतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। पारी पजान के पूप पली बेध न्यावत शीस ना जात बिचारे। ते पै तो कहाँ पहे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नंगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। पोत पवान के पोपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिनु अंत कौंत के धाम सिधारे। तीर्थ नाम दया दिन दान सुसंजम नेम अनेक विशेख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान समान के पिख है। पौन हार जति जतार सभ सो विचार हजार को देख है। श्री भगवान पजे बिन पुपत एक तीवन एक ना लेखे। सुध सुबादुरुन दुबहा सोसा सुना दुर्जान दलेंगे। पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर पार बड़े बड़े आर विचार है सार की तार पछैया।

साहिब श्री सब को श्री नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर पूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सभैव लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान जादिक दान अनेक सोमवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पत अंत से जमफास भरेंगे जे नर श्री पत के परस है पग ते नर फिर न दे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नहात प्रिय।

करियो, सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लखियो रवाचि दिशा में, काहू पछा को शीश निवायो, को भूतान को पूजत है पशु, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो, पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो।

पीर पछाने कट कट के पटपट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क कर तुह कबू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

अंड जेर से तजकिनी उत्पुज खान बहु रच दीनी कहूँ पूला जाह बैठा कहूँ सिमट पै शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे हस्त हो जो तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके

सच ध्यावहे, सचो ध्यावहे जात उदभावहे, गुरमुख जना बुझावहे। इहो सच सबना का खसम है, जिस बख्श

므로 그 이유는 안 떨어져 미쳤던지 아버지들 대하지 버려야 미연 또 그릇식 마이 빠이로 아버지들 반대 석가로 미연 또 아버지들 그다 변사는 시키던 프로사단 전나금아 뼈나 그자네 프로프로네 석불지 सो आओ गुरु प्यारे साथ समझो के तंदे ने सेवा प्रवान करनी हुईया पुला चुका दिखी मा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरण करिए सिख पंथ दे विद्वान सत्कार ज्ञानी सकत्तर सिंह जी उन्हां पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार अज संग्रांद दा दिहाड़ा गुरु प्यारे साथ सिंह जी सो आओ आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पासो आओ सब दी विचार संग्रांद दी विचार उन्हां पासो सरण करिए जी दस लो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हाँ करी बखियान। बेसमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी आषाढ़ तपंदा तिस लग है, हर नाहो नजन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै,

0: वाहेगुरु जी की फतेह। और सत्कार जो शास्त्र जी मारे बख्शिश कान आप सब संगतानू संगतान जी मुबारक हो सब संगतानू मारे बख्शिश कान इस सारे महीने में शुभकामना बख्शिश कान सत्संग जी आप मारे बख्शिश की आप संगत अमृत तो लैके मारी हाजी पढ़ते हैं पितर गुरबाणी आशा की वादे सबूल कीर्तन सरण किए हैं सत्संग जी अरदास परिवार मारे बख्शिश नाम सरण किए हैं महीने का नाम सरण किया है इस बात में गुरु साहब ने आप गुरुकार ने बख्शिश किया है सत्संग संगत ने बेनती है कि जरूर हर रोज गुरु घर आया करो और मत टेक अरदास करो जिन्नी देर तक चाहो हमारे निकी योजना बैठ के सत्संग जी कथा की दरवाजा से आनंद मान सकते हो। सो आप संगत ने बेनती है सत्संग जी जो नाता चौथा डबल बिल्डिंगा की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो वास्ते संगत हर रोज बेनती करी दी है मारे बख्शी की बेअंत परिवार ने अपना दसान सफर करते हैं बेअंत माया गुरु घर पेटा की कंस्ट्रक्शन वास्ते वो बटवागी हैं सत्संग जिन्हें जिन्हें अज तक माया पेटा नहीं की सारे बेनती है कि जरूर अपना बनता दसान कट के सफर करो और गुरु दो इमारत बनिया ने हिस्सा पा के गुरु दुशियां प्राप्त करो। सो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि जो सहज पा आप घर ही कर रहे हो इन्हों के भोग पैणगे 21 जून किसी न कोई ये कोई लोड़ हो संबंध कायम करने की तो आप भाई रजिंदर सिंह नंबर डायल करके उन्होंने तो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो नंबर है 408-712-4145। सो सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि 16 तों लैके 20 तरीक तक संगती रूप में सुखमन साहब के पाठ हो रहे हैं गुरु का सहन हो जे 7:30 तो लैके 8:45 राज तक हर रोज होया करेंगे सत्संग जी 18 जून में है श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की उसनों आपसी सारे मिल के चढ़दी कला मनाईए और गुरु महाराज बख्शियां दातां दा असीं जरूर धन्यवाद करिए। सत्संग जी आप संगत ने बेनती है कि गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह जी का विआह पुरब सारी संगत अब मिल के मनाईए खास करके श्री शंकर दी संगतां वालों खासा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के विआह पुरब बड़ी चढ़दी कला मनाया जाता है। सो इस साल भी मनाया जाना है 26, 27 और 28 गुरु अर्जन देव जी का विआह पुरब श्री संगत दी संगतां वालों आप संगत सारियां पर गुरु दी खुशियां प्रगट करो भाई साहब तैयार ने और सहज पाठ आरंभ करने सानू करिए इस तो बाद स्पैशल तौर पर कीर्तन आरंभ हो रहे हैं 10 तों लैके 11 तक। सो सारी संगत ने बेनती है कि सहज पाठ सरण करो उस तो बाद कीर्तन की हाजरियां भरो अपने जीवन की कड़ियाँ सफला करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो गुरु चरणा की हाजरी भर रखे हो आओ समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा अज पावन अंग 416 तों श्री सहज पाठ अगे आपां प्रारंभ करने हन। प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनियां हन जी 416 अंग तों श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

रंग तमासै चाहे। बाबर वाणी फिर गई कोई न रोटी खाए, इक ना वक्त खुआई है इक ना पूजा जाए। चौके विण हिंदवाणिया क्यों टिक।

वन में तप कर है नित तीर्थ वासा, आप नची नह तामसी काहे भय उदासा, एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै, बिन गुर शब्द न छूट ही भ्रम आवह जावह, एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सुजागे, गुर ते दर कर जानी है

अंतर लीना, ज्ञान अंजन मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन मन ही ना रहा, नाम देव सिमरन कर जाना, जग जीवन से जियो समाना, नाम देव सिमरन कर जाना, जग जीवन से जियो समाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां। गुन गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। गुन गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। बिखियन स्यो काहे रचियो, निमख न होहे उदास, कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। करना पो यों ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक भज हर मना, औद जात है विर्द पयो, सूझे नहीं काल पहुँचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजे भगवान। तन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इन में कछ संगी नहीं, नानक साची जान। पतत उदाहरण पै हरन, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक जानिए सदा वस्त तुम साथ। तन तन जेतो को जितियो, पास्यो नेहो न, कहो नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो, अर्जेनी के ताम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, गत होय। जे सिमरत गत पाइये, ते भज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानो चतर सुजान, जेते उपजियो नानका, लीन ताहे मेहमान। कट कट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक ते पज मना, पाओ निद उतरे पार। सुख दुख जे परसै नहीं, सुख दुख जे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत उस्तत निंदया नाहे, जेहे कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते, हरक सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते, पह काहू को देत नह, पह मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी जे विख्या सगली, तजी लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नरमा थे भाग, जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, निवास जे प्राणी हो, मैं तजी करता राम पछान। कहो नानक वह मुकुत नर, ए मन साची, पैनासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तैक, जे बागुन गोविंद भजो, करन सुनो हर नाद। कहो नानक ताम जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अंकार। कहो नानक आपंतरे, औरन लेत उधार, ज्यो सुपना अर पेखना ऐसे, इन में कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने, प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को जे चीत। जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन, परतता है जम फंद। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, माया कारण ता वही, मूरख लोगा जान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची, मन माया मैर फद रहयो, विसरयो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई, मद माया के, कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए,
कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना जतन बहुत मैं कर रहो मिट्यो न मन को मान दुर्मत्स्यो नानक पदियो राख लहो भगवान बाल जुआनी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी करणो हु तो सो ना कियो परयो लोभ कै पंद नानक सम्यो रम गयो अब क्यों रो मन माया में रम रहयो निकसत ना हिन मीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त ना हिन पीत नर चाहत कछ और की और चितवत रहयो ठगोर नानक पासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुखो कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत है पूरन हो वे काम झूठे मान कहाँ करे सपने जो जान इनमें कछ तेरो नहीं गर्व करत है देह को बिनसे छिन में नीत जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं एक भगत भगवान जे प्राणी कह ना है मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए बिद हर भजो इक मन भय इक चित तीर्थ व्रत अर दान कर मन में तरह गुमान नानक ने फल जात ज्यो कुंचर स्नान सिर कम पियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पई तो न हरस निज कर देखियो जगत में को काहू को ना है नानक तिर हर भगत है तेरा को जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे कह नानक थिर ना रह ज्यो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार चिंता ताकी कीजिए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कह काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न हो तू पाए नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय बल हो वा बंधन छुटे सब किच हो नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय तज गए कौ न निभ्यो साथ कहो नानक ए विपत में एक एक नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद कहो नानक ए जगत में राम नाम उर में गयो जा कै सम नहीं कोए जे सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो जे सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो मुंदावनी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारो एहे वस्तु तजी नह जाई नित नित रघुर तारो तम संसार चलन लगत रहिए सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवां तेरा कीता जा तो नाही मैनु जोग की तोई मैं निर्गुणारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठों नंदन प्रथम राग पहरो वे कर ही पंच राग नि संग उचर ही प्रथमी पैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असले की की पही बारी ए पैरो की पांचों नारी पंचम हरक दिशा सुनावे बंगा लम मद माधव गावे ललत बिलावल गावे अपनी अपनी पहात अष्टपुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापे संग्रागनी पांचो थापे गौंड करी हर देव गंधारी गंधारी इसी होती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा परबल चंड कौशक उभारा खाओ खट औ पौ रानंद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावी तेलंगी देव करी आई बसंती संदूरी संदूर सुहाई अस अहिरी लय पार जा संग लाई पंचवार जा सुरमानंद अपास्कर आये चंद्र बिंब मंगलन सुहाये सरस बान औ आय विनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कच्छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल ओ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ
कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघवे गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी तरी गौरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सागर सागरा सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राके गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राघवे गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गोण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुनगुनी उच्चे सुर सोहो पुन कीनी मेघराग से पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट ओ जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाये संग राग नीतीस सब है पुत्र रागन के अठारह दस बीस मेघराग पुत्रन के नामा बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट ओ जल तारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघराग पुत्रन के नामा खष्ट रागुन गाए संग रागनी तीस सब है पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिहा सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरुता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द तगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदारो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जेदिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जेदिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिदियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष वत्रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पांच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुवस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुखवा तित कर अनहद वाजे अनंत सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतूरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेलें सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी केने रेके दूर जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुखजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुखजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा।

जी, भाई रणजीत सिंह जी, भाई निर्मल सिंह जी सूरा, भाई मनमोहन सिंह जी, बहुत ही पिछले 30-40 साल तो सेवा कर रहे हैं अमेरिका में, बे एरिया च बच्चों हजारों बच्चों कीर्तन की सिखलाई दी है, तो हूँ भी सिखा रहे हैं। इन्हां गुरु महाराज के नाल नाल इन्हां रूहां का भी आशीर्वाद है नाल। और रल के शब्द गायन करिए, इन विद देहो मन

सो संत दे कई प्रकार हैं। बिलावल साहब दा बसंत जो कि हमने सरवण किया, बसंत हिंडोल एक बंदिश है जो कि पुरातन कीर्तने गाते सन, मारवा थाट हिंडोल ते बसंत का मिश्रण, एक हिंडोल बिलावल का मिश्रण भी वह भी बसंत गाया जाता है, फिर बसंत बहार दो रागों का मिश्रण करके उन्हों का भी गायन किया जाता है। सो चार पांच राग हैं अलग अलग उन्हों का गायन होता है। पूर्वी बसंत सब तो पॉपुलर जो है, उसका गायन बहुत ही पॉपुलर है, मोस्टली तो दरबार साहब सुनते हो जब बसंत रुत शुरू होती है, नानक तना बसंत है, जबकि बसंत राग शब्द नहीं श्लोक है, पर बहुत ही बसंत जिहड़े प्रकार हैं बहुत ही